0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम सुजला सुफला।

चौहान का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने

0: के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: टॉपिक फॉर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग।
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और
1: बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना

आपूर्ति दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यवीरों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा

आकाशवाणी भूज केंद्र पर थी आप सांभ भक्ति संगीत न कार्यक्रम अर्चना। हमने आप सुनी रहा था जय श्री बेन सेवादास ने स्वर में नरसिंह मेहता की रचना। आओ सांभिए प्राणलाल व्यास स्वर में समूह स्वर में आ गीत।

0: सामने रहता है करसनदास यादव ना स्वर में खिंदो कोटवाल रचना में और सामने रहे प्राणलाल व्यास ना स्वर में।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

की संलग्न कार्यक्रम अर्चना प्रसारण आकाशवाणी भूज केन्द्र पर कर प्रस्तुत छे कृषि माहिती जेनो विषय छे ग्रीन हाउस में रोग नियंत्रण प्रस्तुति सीडी करमसियाणी।

0: सेनया सह स्पर्धे शिष्ट पश्चात पुरुष एकलवर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंद तरुण मेनेकल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मंगल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना मुसेबी के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेक्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खनिज क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोतवन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोतवन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही है। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सेना अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलेगर ऑर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल

ਜਮਨ ਰਾਉ ਨਾ ਚਲੇ।

आकाशवाणी ने भूज केन्द्र नु प्रसारण आप सांभळी रह्या छो। प्रस्तुत छे प्रासंगिक बाल मजूरी ना दूषण सामे जागृति, संपादन अशरफ नथवाणी, पठन शीतल वैष्णव।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने यह निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति से स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वैसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता

भारतीय सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने

0: Standard for the Post will try to find common ground.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपने

सड़क से बाहर निकाला गया। सत्यनारायण द्वितीय के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14

तो जो चीज पे विश्वास नहीं करा, इंडिया जो किया वो मेरे लिए वैक्सीन वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया वो भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारा भी बहुत अच्छा हुआ, हमारे रिलेटिव और देशवासी को लिए वो

द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा

बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा।

ऑन एआईआर डॉट जीओवी डॉट आईएन और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ ही मुकेश कुमार बल। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं।

बाधा रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती है, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन बरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्ता का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण

0: हुंब से स्वागत करिया थी पांजे कच्छी कार्यक्रम हलो करियूं गाल में अने अज पांजे बचाए आई है अमीर परजा कच्छी भेण राजुल भेण भानुशाली तो ई हकड़ो नव विषय गिनी में आवे आई है तो पा अनी थी मुलाकात करियूं अने अनी जो पण स्वागत करियूं पांजी आकाशवाणी जी हूं भोज केंद्र में भल्या राजुल भेण आजो स्वागत है असा जे कच्छी कार्यक्रम हलो करियूं गाल में
1: आजो खूब खूब आभार पल्लवी भेण तांजो आभार अने आकाशवाणी जो पण आभार
0: ई गुजराती में पण साहित्य में खेड़ान कराया अने हणे अनी के कच्छी जी प्रेरणा पण मिली आए तो कच्छी में की नवो करिए था अकड़ी अनी जी बुक पण प्रकाशन में आए तो पाण जाणो के कोड़ो कोड़ो कराया अने अनी जी कोड़ो सिद्धि हुई तो पहला असांजे श्रोताएं के आजो संपूर्ण परिचय दीजा
1: मुझे नाम राजुल भानुशाली है आऊं मूल हमीरपुर गाम जी है अने हाल मुंबई राती गुजराती साहित्य में लगभग 9-12 वर्ष थी आई मुझा आज सुधी 6 पुस्तक आया आई तेरे कविताएं जा हेरो वार्ता जो अने बो लेख आसपास का पुस्तक आया आई
0: सरस बहु सरस
1: अने आऊ लगभग 4 वर्ष थी कच्ची कविता जे कच्ची साहित्य जे संपर्क में आवे आई अने मुझो कच्ची कविताएं जो पुस्तक अची दो प्रिंट में भी हुए अने अगले महीने मुझे हाथ में कॉपीज अच्छी वेनी
0: सरस आके कच्ची जो को लिखण कयो था इनजी प्रेरणा कडन मली ज से पना सके तो जा
1: एनी एडो थियो के आऊ गुजराती में तो लिखियो थे ना त लालजी भाई मेवाड़ा ती मुझे मतलब संपर्क में आया मुझे गुजराती साहित्य जे एनी पोए गुजराती वाचियो ना एटे एनी सतत मुके उत्साह वधार्यो मुजो अने सतत कच्छी कृति जी उगराणी कयो के आके कच्छी में लिखूज खपे आऊ पहला कच्छी में न तो लिखियो गुजराती में लिखियो थे अने आऊ एनी जी प्रेरणा थी कच्छी में लिखे जो चालू क्यों अने कविता अने वार्ता बॉय कच्छी में लिखती थी गई है
0: सरस सरस बहु सरस अने आज आई जो को नयो विषय खणी ने आया हो उनसे असाजे श्रोता के अवगत करायो
1: ए आऊं कविता में नवो प्रकार खणी आवी है मोनो इमेज है वो काव्य प्रकार है ये कविता में घणे प्रकार हुए छंदस गजल गीत सोनेट हाइकू हिमे जो को काव्य प्रकार है ये कच्छी गुजराती मणि में हले था इते गुजराती काव्य प्रकार में मोनो इमेज काव्य प्रकार है जो को अज सुधी कच्छी में कोई लिखे नहीं ने आऊं मोनो इमेज के कच्छी साहित्य में खणी आवी है
0: बराबर बहु सरस कई मोनो इमेज में बंधारण करी तेवे अने कड़ी रीते इनकी कविता जी रचना करी सका जे से असा जे श्रोता के आई जरा समझाई जा
1: के मोनो इमेज में नंढा नंढा काव्य गुच्छ हुए एकड़ी कविता में नंढा नंढा काव्य गुच्छ पर उ एकड़ी ज विषय ते हुए विषय में अलग अलग न हुए विषय एकड़ो जुए जड़ी रीते पा कोई एकड़ो विषय खणो जे इनके शब्द विषय खयो तो आऊ उनमें 4, 5, 6, 7 मुझी मर्जी अड़ा नंढा नंढा अलग अलग काव्य गुच्छ लिखी सका लघु काव्य समझो कि नंढा नंढा लघु काव्य लिखा तने उ 4, 5, 6, 7, 8 अंजी मर्जी आई डो भी लिखी सको तो आखो नंढा नंढा जो को फुले जो को लघु काव्य लिखो उनजो गुच्छ बनी ने मोनो इमेज बने
0: बराबर એટલે એમની કોઈ લઘુ કાવ્ય એમની કોઈ શબ્દ રચના હે જર કઈ કઈ ગાલ કરે હા પેલા મુકે ક્યાર કે હાઈકુ મે પંજ સત પંજ એડી તે એમની કોઈ શબ્દ મર્યાદા ના હે
1: એરો કોઈ ના અહી તે બો લાઈન ચાર લાઈન જો ભી લખી સકો અહી પંજ લાઈન જો ભી લખી સકો એરો કી ના પંક્તિઓ કે ભી હોઈ સકે પણ વડા વડા छंदस कार्य इनमें न हले
0: हकड़ी वडी कविता में पर नंदी नंदी नंदी नंदी थोड़ी थोड़ी कविता में भेगी थी नकड़ी वडी कविता जो स्वरूप
1: बने एकड़ी सिंगल कविता बने एकड़ी कविता बने पर विषय हकड़ो जो है काव्य बहुत नंदा नंदा हो
0: हम समझी वैसे के हकड़ो हकड़ो फूल लाए इनसे तो दो फूल जोड़ो त्रे फूल जोड़ो चौथो और एक
1: तीसरा
0: जो गुच्छ बनायो बराबर
1: ने
0: बहुत सरसता ए हकड़ो कोई नमूनो असांजे श्रोताएं के सुनायो
1: चौकस मुझा मोनो इमेज आए जिनके शीर्षक है शब्द
0: बराबर
1: इनमें आऊ चाती पंजड़ी के काव्य गुच्छ पूरा के चुपके भी नाले जो चक्रव्यूह भेदेला सबद नाले जे अभिमन्यु कमर कसे से नरे ने ठेठ साथ में कोटे के ओबल खुली तलवार जड़ी मगरूरी डार में खेली बो गुच्छ है कच्चा कुंवरा सबद कलम भेगो अभिसार क्यों मैं कौमार्य तजी छड़ियो मैं नहरो नवजात कविता अवतरी है
0: बराबर सरस
1: वॉइस रिकॉर्डर चुप्पी के आवाज झिली गए ने
0: हाँ
1: हाँ सबद पिंजो परछायो लजा बैठो मणि दिशाएं में
0: बराबर
1: ये चौपड़ी जा पन्ना फेरिंदे फेरिंदे इन सबदों सबद के अखिये से पीवियो चौपड़ी जा पन्ना फेरिंदे फेरिंदे उस सबद के अखिये से पीवियो पा वो सुवाले चटेंजे वेचने जो को अटकी रहा है वो बचार अव्यक्त सबद के पीधे जो चुकीवियो
0: बराबर
1: कैम नी शब्द तमे डुबकी मारी धले के नती समझा जाए सबद भेगो रेजी ममत
0: बराबर
1: ने हर हिकड़े शब्द में सजे सजी गीता लिखी ली हुए थी। जरूरत है फक्त उन शक्यता के चकासी जी ने मुझे आंगरी जे टेरवे थे ही बुखड़ी वाला सकोलिया रखाई ने उ लजे उठा सिक्का ने भटके में था अखरे जे वन में ने जो को इन्हीं जे कातिल झड़बे जी भेस में अच्छी बने उ थई बने था शब्दस्त
0: बराबर
1: ने शब्द पर क्या खेता नहीं है ने गड़ी दंद गोठ गया तो एक कन्नड़िए बैठा
0: बराबर है कन्नड़ जब तमनी थे कर लगी भैया
1: ही यही मोनो इमेज
0: बराबर बहुत सरस कविता है पण असाजे श्रोता है कि ही कविता जको प्रेरणा थी बनाया या तुमजो सार पण समझायो तो श्रोता है कि मजा अची वंदी क्या जी कविता जो जको सार है से पण जरा असा के समझायो जको अभिमन्यु जी जको आई गाल करया कि भाई अभिमन्यु है ये कोठा ची ले आयो अन जी मां जे पेट में अमुक सिखी न सक्यो अन कोई सकोलिया जे वच में अची वे फसाई वे इन भी से पण थोड़ो जा जणा सको तो
1: के इनने अभिमन्यु प्रतीक तरीके वापरे होय
0: बराबर
1: के अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदेला अंदर चक्रव्यूह में दाखिल थे चक्रव्यूह के भेदेला करे ने पर अभिमन्यु चक्रव्यूह के भेदी सक्यो ने बराबर ना इनके इनजो हनन हणी में दो इनके तो एड़ी ते आऊं इनके प्रतीक तरीके वापरे हुए के चुपके भी नाले जो चक्रव्यूह है ये समझो के वो जहाँ आई वो पति पत्नी हुई सके था भाभा हुई सके था पेढ़ी माते माधी कोई इतने कोई कारण थी डको थियो है अने वो मो चढ़ाई बोल चुपके जी नपट पकड़े गने
0: अने शब्द न ता बोले
1: हां पहले से बातचीत पण बंद करे नवटे तो गले वक्त ई थिए ए हेड जाने की थी है कि उनके मन थी तो गाल करे जो
0: हां
1: जल्दी ही चुपके जी छोटे यानी छोटे न ती सके को ई जो को मांजी मगरूरी अहंकार ओ रहे तो
0: बराबर
1: ई जर एकेवी लिखे तो चुपके दी नाले जो चक्रव्यूह भेजेला
0: हां
1: ये संबंध शब्द नाले जी अभिमन्यु कमर करसे
0: यानी
1: थई न सके को के जो सातवें कोठे में अभिमन्यु सातवें कोठे के भेजे न सके सातवें कोठे के खुली तलवार जड़ी मगरूरी उभी हुई अहंकार उभो
0: हां
1: वो अहंकार ओते उभे उभे दार में खेलो कि भले ही विचार करे तो बाकी
0: भेदी गंदो पर भेदी नहीं
1: हां अहंकार ऐसी चीज है जो को न तो ही कर ले
0: बहुत सरस आंजी रचना पुठिया बहुत सरस मर्मो है अने बहुत सरस मजा आई राजुल बेन आजी कविता बहुत सरस हुई अने ही कविता लाय करे ने आई टाइम कदे कडो था से जोजा जरा कसा के
1: कविता ला करे टाइम कडी जो न हुए कविता हेते साहित्यकार चोनो के जैन सुधी कविता आजे दरवाजे ते टको आगे ना हर पिन के न लिखे जी जेर उ अंजे खपे के अच्छी ने वही रहे पैर आके उनके कागज पे होता रे जी एटे कविता ला करे टाइम कढूं कढा ती के कढूं कफे तो कई कविता लिखा जाती बस
0: अंत आत्मा में थी स्फूरे थी कविता
1: हां कविता स्फूरे थी अने जे स्फूरे ते इनके
0: टाइम मिली बने तो
1: हां टाइम पर तो बड़ी बने
0: बहुत सरस हां एन आज एकड़ी एड़ी कविता रे भावे स्वरूप वाली कोना मंजो चा
1: मोनो इमेज
0: मोनो इमेज हाते मोनो इमेज वाली हनागड़ी कविता सांजे सोता है के परसे दियो
1: नदी कविता जो शीर्षक है नई कविता जो शीर्षक है नदी अने स्त्री
0: बराबर
1: नदी अने स्त्री ई बोई नरिंधा न तो अमुक लक्षण जो को नदी जाए ना उज स्त्री में पाणी
0: जी हां
1: जड़ी ते नदी फलद्रुप थी है कांप दे तो ते सरस उगे की
0: हां
1: जो काम कम चाहिए थे स्त्री पण नवी नव सर्जन करी थी नदी जीवन देती स्त्री नव जीवन देती એટલે અમુક એ લાક્ષણિકતાઓ હોય જો કો નદી અને સ્ત્રી મે સરખી હોય અને કોડી મુકે ઇન વિશે લખી જી પૂર્ણ થઈ અને એ કવિતા નદી અને સ્ત્રી મોનો ઇમેજ આવતા રહી હે
0: બરાબર
1: એમ જો પહેલું ગુછ હે કોઈ ઉ ખેલી તો છો કેળો ખેલી खड़क से टकराई ने फेंट फेंट थी बने और नदी जड़ो कोई उ फड़ी पूछो कैरो फड़ी वैन बंधते पुठिया पट में वधी पे उ फड़द्रुपता जड़ो देव कुछ है नदी किनारे उबल रूपारी स्त्री के नहरे रूपारी स्त्री धस मस दी नदी के नहरे नदी के थियो छल आऊं जो स्त्री हुआ स्त्री के थियो चल आऊं जो नदी हुआ
0: स्त्री की नदी थे जो मन थे, नदी की स्त्री थे जो मन थे, सरस
1: माने जो को हुए
0: उनकी कदर न थी वे पाके।
1: हां पाके उनमें द्रोह न तो हुए, पाके थे कि ही हो जके जाऊं, ही मिले हो जके तो पाके थी है कि ही हेडा एलो है बराबर ना।
0: बराबर
1: तो कुछ गुच्छा है नदी दस मस्ती अच्छी ने इनमें घुसी तो गई तो पुल मुझानी एव वेगर जे आदम जड़े वेरा किनारे ते वैनो पकन रीते छेवटे अखीं जे खूने ता हल्दी थई। ने अगलो है जे नदी मरी वने
0: तो जीवन सुन्य थई वने,
1: जे नदी मरी वने तो अन्ना ही सवल जा पड़गा समय ते पहला किनारे ते उबल होड़ी पंड जे दे जो डान दे देने।
0: बराबर
1: तू रोज रात चो कागर जी होड़ी बनाई हुई ने तकली जे बाजू में रखी छड़ती हुई इनके द्रा हो तो पथारी हिकड़ी नदी है जिनमें पिंड बुढ़ी रोंदी हाने हु सतत नदी जे सुकन जी वाट ने रहती।
0: वाह
1: चलो गुच्छा है ऊपर वास में आकाश घिराणु हो हाने हिकड़े किनारे नु बे किनारे सुधी तरी जी कैडी मजा आचींदी नदी में रोंदल मछली राजी जी रेड़ थई वई ही है मोनो इमेज जिनमें नदी अनुस्त्री विषय कविता जा पंचत गुच्छ दीगा लिखी आई नंदी नंदी कविता हुई इन जो गुच्छ बनायो है अने ई एकड़ी मोनो इमेज कविता चोवा जाए।
0: बहुत सरस कविता हुई जो करें आप आजा राजल बेन अने हने टाइम पूरो थे लो आई हुआ है तो पांजा श्रोता है इन वटा थी पा विदाय गंदा सी नहीं राजुल बेन वटे घणो बदो सरस मजा जो साहित्य है जिन जो पार अस्पान करदा सी અને અને જો પણ આભાર માન્યો હતા કે એને આયા પંજ સ્ટુડિયો માં અને પાંચ શ્રોતા કે એટલું સરસ મજા જો નવો માહિતી સભર જ્ઞાન દેના
1: અને જો પણ આભાર પલ્લવી બેન અને આકાશવાણી જો પણ મૂકે તે આમંત્રણ ને લગાડી ખૂબ ખૂબ આભાર
0: જી અને સંકલ્પ મિની ભાવ બેન કે મજા જજા કરીને રામ રામ રામ રામ।

मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग से

आप सांभ गीत सुधा प्रसारण आकाशवाणी बुज केन्द्र पर करवामां आव्युं। प्रस्तुत छे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: श्रोताओं, मैं हूँ विनेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। ये सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
0: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
0: जी,
1: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
0: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनरी शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ब्रह्मपुर के कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: ग्राम पजौलिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतीन्द्र कुमार चंचौलिया और श्रीमती कल्पना चंचौलिया।
1: असिटी गुनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसई जी।
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा रानी जी।
1: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
0: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
0: जी,
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
0: जी,
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
0: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जुड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है। ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन के येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया। प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
0: यहाँ से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्न के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चीटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चीटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: शिम का राग सुनाती चींटी,
2: शिम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।

0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वचन, आइए आप सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करते हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटेलियन लिंडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: कार्यक्रम गांव के धरती और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

आकाशवाणी ना भूज केन्द्र नु प्रसारण आप सांभळ्या छो। प्रस्तुत छे संतवाणी ना नारायण स्वामी ना भजनों।

भूलो बेमारे तुम्हें प्रेम थी जो योग्यारा।

ਦੁਆਰਾ ਸਦਗੁਰੂ ਜਨਾ।

ਕਮਾਰੀ ਆ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾਰਾ ਜਬ ਲਗ ਹੋ।

आप सुन रहे थे संत वाणी में सुनिए भजन प्रसारण आकाशवाणी भूज केंद्र पर थी करवामां आव्युं। अने हवे थोड़ी ज वारमां सिंधी कार्यक्रम अमदावाद केंद्र थी रिले करीशुं।

नमस्कार, आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा प्रस्तुत छे अत्यार नो मुख्य समाचार। नीति आयोग ने बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहू भारत ने विकास गाथा विश्व ने प्रेरणा आप रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड में 2 दिवस की मुलाकात जैसे खाद्य क्षेत्र में भारत नागरिकों की सुरक्षा मेट सरकार कटिबद्ध। शेयर बजार में प्रारंभिक कारोबार में सेंसेक्स 700 ने निफ्टी में 200 अंक में उछाड़ो। ईडीए आईडीएफसी बैंक साथ 6,000 करोड़ की छेतरपिंडी केस में 2 व्यक्ति की धरपकड़ करी। केन्द्र तेज असम और नागालैंड सरकार वच्चे क्रूड ऑइल और कुदरती गैस संशोधन और उत्पादन मेट समझूती करार थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर संघर्ष समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने राजद्वारी वाटाघाटों पर भार मुक्य। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज थी स्विट्जरलैंड में 2 दिवस की मुलाकात। अमरनाथ यात्रा पहला रस्ता समारकाम आज थी 17 जून सुधी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय धोरीमार्ग के भागों पर रात्रि समय ट्राफिक ने अवर जवर पर प्रतिबंध। राज्यसभा की चूंटनी में गुजरात भाजपा 4 उम्मीदवार बिनहरीफ विजेता थे। 12 वर्ष विकास विश्वास में जनकल्याण कार्यक्रम अंतर्गत राज्य में अनेकविध कार्यक्रमों योजाई रहा है। अमदावाद विमान दुर्घटना ने आज 1 वर्ष पूरु थयु। पोरबंदर में आतीकाल 2 दिवसीय विकसित पोरबंदर फर्निचर पार्क समिट आयोजन कर। पोरबंदर में विश्व की सौथी मोघी केरी एक

सेगलेस का पोए दोस्तों आवाजो स्वागत है करियो सिंधी कार्यक्रम सुरहान में आज सुरहान कार्यक्रम में अवे सबहा पारे मधना सेस्लो हिक फनकार हिक फनकार आज जे फनकार के अवे बुधना उहे आहिं कुमारी मीरा देवी जिन जो पूरा नालो हो मीरा देवी चोतराम धीर बलानी सदा है मीरा देवी सिंधी भक्ति संगीत जी बेहतरीन गायक रही सिंधी जे बस्ती मिलानी पंजे मधुर आवाज द्वारा सिंधी भक्ति संगीत के लोकप्रिय कयो हरन जो जन्म 9 अक्टूबर 1925 ते जमशाही सिंध में थियो अचो कार्यक्रम में मीरा देवी जे आवाज में बुधूं संदन जी ही भक्ति रचना

मेरा देवी जी आवाज जी मुशाबत संत कवराम जी आवाज सा के हद ताई कई वई।

वाहे जो संगीतकार सी अर्जुन फिल्म संत कमल राम लाए मीरा देवी खां गीत कराया। मीरा देवी आकाशवाणी का पिण काफी संगीत प्रोग्राम दिनाओ उन्हें जा कुछ रिकॉर्ड पिण भरल अथन।

0: Kiji Rishnani bhi raha ho, Aji ji fankara, Meera Devi kha. Dosto, karkam mein hamara pesh hai, Shair ji kalam mein, hame sirait, Sada hayat bark shair, Shri Kodumal Vadwani Janak kha, Kavita paath.
1: Dosto, pesh karne waya, Chand Ghazal. Jeki, vejho rahanda hai, Jeki, वेझो रहंदा आहिनि याद किथे से पवंदा आहिनि सुहिणा साथी तुंहिंजा ई सुहिणा साथी तुंहिंजा ई कजल कटोरा वहंदा आहिनि तोसां मिलंदे ई दिल में तोसां मिलंदे ई दिल में छम छम घुंगरू वॼंदा आहिनि छम छम घुंगरू वॼंदा आहिनि मिठड़ा बोल समूर आई मिठड़ा बोल समूर आई माखियां लॻंदा आहिनि मिठड़ा बोल समूर आई माखियां लॻंदा आहिनि तुंहिंजी चाहत जी चटल तुंहिंजी चाहत जी चटल चाहक घुमंदा रहंदा आहिनि सुपननि जा संसार सणे सुपनन या संसार समय एक ही पल में बहंदा है बसरे जाने ब जा तो कदे बसरे तो जाने ब जा तो कदे गीत बला भी ठंगा है जेकी वेजो रहंदा है याद किथे से पवंदा है एक बहुत तो बड़ा है बुबरन उठा शुरू करो बुबरन उथण शुरू कयो ॾाढनि विहण शुरू कयो पंहिंजनि जॾहिं धिके कढियो पंहिंजनि जॾहिं धिके कढियो धारनि सॼण शुरू कयो यारनि मथे ॾिठो जिते यारनि मथे ॾिठो जिते कारण पुछण शुरू कयो यारनि मथे ॾिठो जिते कारण पुछण शुरू कयो खाली गिलास खे ॾिसी साकीअ भरण शुरू कयो जिन ते

हमेशा डंड कड़िया जिनथे हमेशा डंड कड़िया मानो करण शुरू करो वेण के मुंह बुधी बुधी वेण के मुंह बुधी बुधी वारो वठण शुरू करो पूरत नथे पई होते पूरत नथे पई होते बारण जमण शुरू करो कश्ती कखन संधि दिसी कश्ती कखन संधि दिसी लहरुं रोशन शुरू करो रोशो जहान जो दिसी रोशो जहान जो दिसी जानब खिलण शुरू करो डुबरण उथण शुरू करो ॾाढण विहण शुरू करो। दोस्तो हिकु ॿियो गज़ल दिलीअ ते धरे सिर खे अॻिते वधां थो मुड़ी कीन कॾहिं बि पुठिते ॾिसां थो कयां कोन उन बुख जी परवाह कॾहिं बि कयां कोन उन बुख जी परवाह कॾहिं बि पती ऐं थधीअ खे बि सम्झी पवां थो विहाणो कखन जो बणी अर्श चादर विहाणो कखन जो बणी अर्श चादर वतन जो कसम न सुख सां सुम्हां थो सहजन दहशत वरे देश में का सहजन दहशत वरे देश में का चिता ए सॼे मुल्क खे न वञा थो न बिगड़े किथे सुह भारत जी मुंहिंजे न बिगड़े किथे सुह भारत जी मुंहिंजे सपन रात ॾींहं इहो ई ॾिसां थो ठिकाणा मिटाए रकीबन जाईंदुसि ठिकाणा मिटाए रकीबन जाईंदुसि खणी साण बारूद एॾो वञा थो कंदियूं कोन जानब असर बम ऐं गोलियूं कंदियूं कोन जानब असर बम ऐं गोलियूं ॿधी जो कफन दुश्मननि खे हला थो तिरीअ ते धरे सिर खे अॻिते वधां थो मुड़ी कीअं कॾहिं बि पुठिते ॾिसां थो। दोस्त हिकु ॿियो बदल खेल खेल में जो वेझड़ आई थी ॼाण दीड़ी वाह पराई थी अॼु रकीबन खे थो हबीब लॻा अॼु रकीबन खे थो हबीब लॻा ख़ैर पंहिंजी त पुठ भराई थी बेडपो थी हलणु सिखियो आहियां बेडपो थी हलणु सिखियो आहियां हाल मज़बूत जो कराई थी हाल हर को अची पुछे वेठो हाल हर को अची पुछे वेठो कुझु दुखनि में बि ॼण डराई थी हाल हर को अची पुछे वेठो कुझु दुखनि में बि ॼण डराई थी पुट पंहिंजो शरीर भायां थो पुट पंहिंजो शरीर भायां थो बस गिटियुनि में जो मोकर आई थी छोकिरो को सुठो ॾिसी आया छोकिरो को सुठो ॾिसी आया धीउ तिन खां बि अॼु पढ़ाई थी सिंध सुरमा छॾे ॾिना हर कंहिं सिंध सुरमा छॾे ॾिना हर कंहिं कंहिं वॾे सोट में सराई थी खिले खिल में जो वेझड़ाई थी ॼण दिलड़ी वा पराई थी वेड़ी देर सां घर फिटाइण लॻी आहे वेड़ी देर सां घर फिटाइण लॻी आहे ॾेई ॾाढ डमरियूं ॾकाइण लॻी आहे वेड़ी देर सां घर फिटाइण लॻी आहे ॾेई ॾाढ डमरियूं ॾकाइण लॻी आहे अगरि ख़र्च जी किथ कयां थो पकाई अगरि ख़र्च जी किथ कयां थो पकाई वञी माउ खेसो ॿुधाइण लॻी आहे शहर बि असांजो हुकूमत असांजी शहर बि असांजो हुकूमत असांजी सभी पीउ खई पॾाइण लॻी आहे करे केस कारा हले ॿाह हलोॾे करे केस कारा हले ॿाह हलोॾे सरे आम मूंखे लॼाइण लॻी आहे ॿरे थी वञे पाण ॾह ॾह जा फुलका ॿरे थी वञे

आकाशवाणी में भोज केंद्र में प्रसारण आप सुन रहे हो। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनोरंजन। आप सुन रहे हैं फिल्म तुम बन तुम्हारा गीत जगदीश सिंह और रेखा भारद्वाज जी शर्मा।

समीप सामुदाय पर अच्छी काफी प्रसारण आकाशवाणी भोज केंद्र पर करवाणी कार्यक्रम अमदावाद केन्द्र थी रिले करीशू।

शूटिंग कोच अभूतपूर्व एशियन गेम्स में स्वर्ण चंद्रक विजेता जसपाल राणा ने निधन, प्रधानमंत्री शोक व्यक्त करो। ब्रिटेन में सशस्त्र धरना मंत्री अल कैंस संरक्षण भंडोर विवाद बाद राजीनामू आप सरकारी संस्था की औद्योगिक वाणिज्यिक ग्राहकों ने रिटेल आउटलेट्स में मोटर स्पीरिट और हाई स्पीड डीजल खरीदवा पर प्रतिबंध मुक्यो। जामनगर में बीडी विस्तार में जिला वहीवटी तंत्र द्वारा 12,000 चौरस मीटर जगह पर दबाव दूर कराया। साथ ही अत्यारे मुख्य समाचार पूरा थे। हवा पक्षी और बपोरे बाद आगे मुख्य समाचार सामने सकशो।

अलसंदशु सचिन जिगर राघव चैतन्य ने वरुण जन्म स्वर्मा तेरी बातों में ऐसा ऊर्जा जिया फिल्म गीत संगीत निर्देशन सचिन जिगर ने शब्द लिखा इंद्राणी ले।

0: हमारे गीत संदेशो अलका अग्निज्ञा शर्मा संगीत राजू सिन्यू आणि शब्द लख्याचे जावेद अख्तरे.
1: एक समय था कि फिजाओं में संगीत खुला था. हवाएं घनेरे पेड़ों में छुप के अपनी रागनियां सुनाती थीं.

मात्र दार फिल्म हिंदी गीतना कार्यक्रम अंतिम गीत आपे सांभळ्यु एलिशा चिनोना स्वरमा अने साथे ज दार फिल्म हिंदी गीतना कार्यक्रम अहीं समाप्त करीए छीए। प्रसारण आकाशवाणीना अमदावाद वडोदरा केन्द्र परथी करवामां आव्युं। मित्र अमारा स्टूडियोनी घड़ियाळमां बपोरना 12 थवा आव्या छे। थोड़ी ज वारमां आप सांभळशो अत्यार सुधीना मुख्य समाचार।

मुख्यमंत्री आप साता महिला मेटो विशेष कार्यक्रम सहेर प्रसारण आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा राजकोट भूज केन्द्र पर कर।

समता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक विक्रय केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने

સાંભળશો ગુજરાતી માં સમાચાર.

0: मैदान। वहीं पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में सेमीफाइनल में प्रवेश कर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज जानव्यू कि उद्योग साहसिकता थी लेने शिक्षण आरोग्य संभाल स्वच्छता आवास रमतगमत विज्ञान और शासन जेवा विविध क्षेत्रों में महिलाओं महत्वपूर्ण भूमिका भजी रही है। एक सोशियल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी जानव्यू कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जेवा उभरता क्षेत्र में महिलाओं की वधती भागीदारी तक में नवा रस्ता खोली रही है और देशभर में विकास परिदृश्य ने बदली रही है। श्री मोदी भारत में महिला शक्ति ने विज्ञान अवकाश और नवीनता जेवा क्षेत्र में पोतानी छाप छोड़ी रही है के अंगे खुशी व्यक्त करी हती।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे राष्ट्रीय स्तर
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का
0: नेतृत्व हेठ भारत छेल्ला 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत पर आधारित नोंधपात्र प्रगति करी है। आ समयगाळा दरमियान मोदी सरकारे गरीबों खेडूतो महिलाओं और युवाओं कल्याण और सशक्तिकरण माटे घणी मुख्य पहल हाथ धरी छे। सरकार ने विदेश नीति द्वारा भारत में वैश्विक नेता तरीके स्थान आपवा माटे लेवामां आवेला पगला विषे सांभळीए एक अहेवाल।
3: भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है। फॉरेन रिश्तों को मजबूत किया है और नए दौर भी बनाए हैं। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात जित्वा टकराया था। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। चक्रवात जित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकारी संस्था के औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों ने रिटेलर्स पास थी मोटर इंधन और हाईस्पीड डीजल खरीदवा पर प्रतिबंध मुक्यो। सरकारी स्थानीय पेट्रोल पंप पर खरीदी करने सूचव्यू। पश्चिम एशिया संघर्ष ने कारण वैश्विक पुरवठा श्रृंखला में विक्षेप वच्चे स्थानिक ईंधन की अछत ने रोकवा माटे आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्रालय जणाव्यु हतुं कि आ प्रतिबंध 90 दिवस सुधी अमलमां रहेशे। रिटेलर्स ने दररोज ग्राहक दीठ महत्तम 200 लीटर हाईस्पीड डीजल वेचवानो निर्देश आपवामां आव्यो छे। मंत्रालय कह्युं कि

कानूनी समीक्षा करना एक उच्च स्तरीय बैठक में अध्यक्षता कर रहा है। केंद्रीय जाहिर परामर्श मांगे टेली कम्युनिकेशन नियमों में मुसद्दों बाहर गयो। भारतीय शूटिंग कोच और भूतपूर्व एशियन गेम्स में सुवर्ण चंद्रक विजेता जसपाल राणा ने निधन। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में सेमीफाइनल में प्रवेश कर। अब साथी आकाशवाणी पर समाचार पूरा था है। हम पक्षी आप बपोरे 2:30 प्रादेशिक समाचार सामने सकस। नमस्कार। आकाशवाणी का ये अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भोज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फौजी दोस्तों के लिए फिल्म संगीत का हमारा विशेष कार्यक्रम जय भारती।

कार्तिकेय क्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी ईशा रत्नाकर मंदिर का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज 12 जून की यह तारीख हमें एक ऐसी दुखद घटना की याद दिलाती है जिसने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया था। अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद हुई विमान दुर्घटना में कई अनमोल जिंदगियां असमय हमसे बिछड़ गई। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था बल्कि अनेक परिवारों के सपनों, उम्मीदों और अपनों से जुड़े अनगिनत रिश्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाली एक त्रासदी थी। आज हम सभी दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। यह घटना हमें जीवन के अनमोल होने का एहसास कराती है। आइए हम जीवन के हर पल को प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मकता के साथ जीने का संकल्प लें। जयभारती कार्यक्रम का यह प्रथम गाना लकी अली के स्वर में फिल्म कहो ना प्यार है। संगीत निर्देशन राजेश रोशन का और शब्द लिखे हैं विजय अकेला ने।

दोस्त जिंदगी की असली खूबसूरती केवल सफलता दौलत या मंजिलों में नहीं बल्कि उन भावनाओं में छिपी होती है जो हमारे दिल को सुकून देती है। अपनापन विश्वास स्नेह और रिश्तों की गर्माहट जीवन को अर्थ प्रदान करती है। जब दिलों में प्रेम और संवेदनाएं होती है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं और साधारण से पल भी यादगार बन जाते हैं। अपने लोगों के साथ बिताया गया समय उनकी मुस्कान और उनका साथ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए रिश्तों को संजोए अपनेपन को महत्व दे और

को कृतज्ञता और सकारात्मक के साथ जिए, क्योंकि इन्हीं भावनाओं से जीवन में खुशियों के रंग और जीने की असली वजह मिलती है। अब सुनिएगा ताल फिल्म का ये गाना, अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम और एआर रहमान के स्वर में, संगीतकार एआर रहमान, गीतकार आनंद बख्शी।

कभी कभी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से चलते हैं। भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई ऐसा हो जिसके साथ चुप्पी भी सुकून दे तो वही साथ सबसे खास बन जाता है। ऐसे लोग हमारी परेशानियों का समाधान हमेशा नहीं देते लेकिन उनकी मौजूदगी ही दिल को हल्का कर देती है। जीवन में यही छोटे छोटे एहसास यही अपनापन और यही साथ हमें बेहतर से मजबूत बनाते हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं तमाशा फिल्म का एक गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का स्वर। इस गीत को संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने और बोल लिखे है इरशाद कामिल ने।

हर बच्चे का बचपन खेल, शिक्षा, सपनों और खुशियों से भरा होना चाहिए। लेकिन दुनिया में आज भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में किताबों की जगह काम के औजार है। इसी गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी ताकि बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर आवाज उठाई जा सके और बच्चों को उनका अधिकारपूर्ण बचपन वापस मिल सके। जो भारतीय कार्यक्रम का ये अगला गाना अब आप सुनेंगे रमन महादेवन के स्वर में, फिल्म है तारे जमीन पर, संगीत दिया है शंकर महादेवन ने और बोल लिखे हैं प्रसन्न जोशी ने।

दोस्तों, जिंदगी भी एक तितली की तरह होती है, रंगों से भरी, स्वतंत्र और हर पल कुछ नया सिखाने वाली। जब हम अपने सपनों को खोलकर जीने का साहस रखते हैं, तभी हमारे भीतर छिपी संभावनाएं भी पंख फैलाने लगती है। डर और सीमाओं से बाहर निकलकर जब हम अपने मन की सुनते हैं, तभी जीवन के असली रंग दिखाई देते हैं। इसलिए हमेशा अपने सपनों पर विश्वास रखिए, नई उड़ान भरने का साहस और हौसला रखिए और हर दिन उत्साह के साथ अपनाए, क्योंकि खुला आसमान उन्हीं का होता है जो उड़ने का साहस रखते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं चन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर के स्वर में चन्मय एक्सप्रेस फिल्म का ये गाना। इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने और शब्द अमिताभ भट्टाचार्य के।

अब आपको सुनवाते हैं दिल से फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और एमसी श्रीकुमार का स्वर, संगीत दिया है ए आर रहमान ने और वो लिखे हैं दिलजोर ने।

आज हम प्रख्यात भारतीय न्यायविद और विधिशास्त्री पी बी गजेंद्र वरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, न्यायमूर्ति प्रहलाद बालाचार्य गजेंद्र वरकर ने भारत के सातवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने ज्ञान, निष्पक्षता और न्याय के प्रति अटूट समर्पण देश के लिए सदैव सम्मानित रहेगा। अब सुनिए फिल्म बाजीराव मस्तानी से ये गीत। अरिजीत सिंह का स्वर, संगीत दिया है शाहिर प्रतीश ने और बोल लिखे है एन तुराज ने।

और इसी के साथ आज का जय भारती कार्यक्रम समाप्त करने के लिए आपके रेडियो दोस्त इशारत मेहता नांगर को इजाजत दीजिए। जय जवान। जय भारती कार्यक्रम का प्रसारण किया गया आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भोज केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है।

0: 伸びの本へアンメサムリアクサマチャールバスターセप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का दृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने

0: अनुराग सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अर्से से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बनाए, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमी है, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध है इनको और प्रमोट करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स वहां लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने

अपना पेट्रोल और डीजल थोक विक्रय केंद्र से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

एक्सप्रेस योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजी 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। यह सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है।

0: मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित है। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आक्षेप के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ है जया भारती।
1: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मेक्सिको के ज़ापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मेक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मेक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी

0: I see some of on top. पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में

गई बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नागरिकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

पंद्रह रचना प्रसंगी जगजीत सिंह शर्मा उमा शंकर जोशी आप मानी रहा छो गुजराती गीतों मित्र आज प्रखर साहित्यकार लोक संस्कृति न संशोधक और गुजराती साहित्य न अग्रणी हस्ताक्षर जयमल परमार ने पुण्यतिथि निमित्त अपने तुम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करे। जयमल परमारे गुजराती लोक साहित्य लोक गीतों ने लोक संस्कृति न संवर्धन अमूल्य योगदान आपने कलम द्वारा ग्राम्य जीवन लोक परंपराओं मानवीय संवेदनाओं ने एक अनोखी अभिव्यक्ति मिली थी। गुजराती गीतों कार्यक्रम में हम अपने अंतिम गीत संभाले श्रेया घोषाल शर्मा रचना से उमाशंकर जोशी।

Quizá no es ficticio. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा,

जी जी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 मिनट तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वह नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों

그렇게요? 오늘 다 되네요.

आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम

सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश

आयोजन कराया। राज्य में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सरहदी गांवों में मुलाकात अंतर्गत एडीजी टी अजय कुमार चौधरी ने पूर्व कच्छ वागड़ विस्तार में रापर तालुका में झाटावाड़ा और श्रीनिवास में मुलाकात ली थी। डीआईजी सुधा पांडे भूज तालुका में मोटा दिनोरा गांव में मुलाकात ली, विस्तार की परिस्थिति से वाकिफ थे। पानी छोड़वामां आवता आगामी 3-4 दिवस में कच्छ में आड़ेसर फतेहगढ़ सरहदे चेनेज 82 सुधी पहुंची जशे। खाली थी गये केनालों भराता और डायवर्सन ने पार करता पानी छोड़वामां छेवाड़ा ने मोड़पुरा सुधी पहुंचता अंदाजे एकाद अठवाडिया में समय लगवानो अंदाज व्यक्त करायो। काजरी द्वारा पद्धर अने लाखों में खेत बचाओ अभियान अंतर्गत खेडूत संपर्क और जागृति कार्यक्रम योजायो। वैज्ञानिक निष्णातोए खेडूतों ने खेतरों की रूबरू मुलाकात लईने तेमनी साथे सीधो संवाद कर्यो। अंजारमां चालू वर्षथी ज शुरू थशे नवी पॉलिटेक्निक कॉलेज। भारतीय शूटिंग कोच और भूतपूर्व एशियन गेम्स में स्वर्ण चंद्रक विजेता जसपाल राणा निधन। आगामी 7 दिवस सुधी दक्षिण गुजरात में विविध विस्तारों में वरसाद की आगाही। हवे पछीनो मुख्य समाचार सांजे 7:05 आपशे।

भारत में गतिशीलता से लखाता एक नवा भविष्य में अने गगनयन का भारत में आत्मविश्वास 12 वर्ष की यात्रा से गुजरात में अंत्योदय

Dragon Ball Z,

फिल्म छह जानी नो कलाकारों से मिलने के लिए सैड में सरगम।

आकाशवाणी आहे. सिंधी समाचारांसह ज्योती फुलवाणी सब खां अवल बुधवासी खास खास खबरूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर खिते में औरतन की हिस्सेदारी के सारायो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आर्तवार भी लीस में इंडिया इनोवेट्स की शुभ शुरुआत कंदा. गृहमंत्री अमित शाह अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को जायजो वठण लाइ उच्च सतही बैठक की सदारत कई. वजवाद भारत में अमरीकी एम्बेसी के डिप्यूटी चीफ के तलब कर. एशियाई रांदन में सोने तमगे के विजेता जसपाल राणा जो चालानो. पी वी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जय पुख्ती कई. खबरों तफसील सा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो त गुजरियल 12 सालन में सरकार औरतन लाए एक साजगार माहौल पैदा कर.

0: जीअं इहे राष्ट्र जे निर्माण में पंहिंजे मुकमल सघ खे महसूस करे सघनि। प्रधानमंत्री चयो त औरतूं माली शमूलियत ऐं कारोबारी खां वठी तइलीम, सिहत जी सार संभाल, सफ़ाई, रहाइश, रांदियुनि, साइंस ऐं हुकमरानी ताईं मुख़्तलिफ़ खेत्रनि में अहम किरदार अदा करे रहियूं आहिनि। हिकु सोशल मीडिया जी पोस्ट में श्री मोदीअ चयो त ड्रोन तकनीक जहिड़नि उभरंदड़ खेत्रनि में औरतुनि जी वधंदड़ शिरकत मौक़नि जा नवां रस्ता खोले रही आहे ऐं मुल्क में विकास जी मंज़र खे तब्दील करे रही आहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 जून खां फ्रांस ऐं स्लोवाकिया जो दौरो कंदो। 2014 खां पोइ प्रधानमंत्री जो फ्रांस जो इहो सतो सरकारी दौरो आहे। फ्रांस जे शहर नीस में प्रधानमंत्री मोदी ऐं फ्रांस जो राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन गॾियल तौर ते इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम जो महूरत कंदा। इहो भारत जो ख़ासि नई वीचारधारा वारो सम्मेलन आहे जेको इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन जे तहत मुंतज़िम थी रहियो आहे। फ्रांस ऐं भारत जे सफ़ीर संजीव सिंगला आकाशवाणी समाचार खे ॿुधायो त हिन जो मक़सदु आलमी सतह ते भारत जे डीप टेक टैलेंट जो नुमा करणु आहे। हिकु रिपोर्ट।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बनाए, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज है, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध है इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नीस वेंदो ऐं इन बैग G7 समिट लाइ फ्रांस जे एवियन मोटंदो। गृहमंत्री अमित शाह अॼु नई दिल्लीअ में हिकु आला सतही इजलास जी सदारत कई, जंहिंमें श्री अमरनाथ यात्रा जी तयारियुनि जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में आर्मी चीफ जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सलामती सलाहकार अजीत डोभल, जम्मू ऐं कश्मीर जे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऐं CRPF, BSF, CISF, ITBP ऐं SSB जे डायरेक्टर जनरल शिरकत कई। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई ते शुरू थींदी ऐं 28 अगस्त ते पूरी थींदी। राष्ट्रपति सांसद द्रौपदी मुर्मू अॼु 2 ॾींहनि जे दौरे ते देहरादून पहुती। हिन जो स्वागत उत्तराखंड जे गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर ऐं मुख्य वज़ीर पुष्कर सिंह दामिया कयो। राष्ट्रपति साहिब अॼु देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन जो दौरो कंदी ऐं 132 एकड़ जे राष्ट्रपति पार्क जे निर्माण कार्य ऐं तरक़ियाती कम जो मुआइनो कंदी। ही ख़बरूं तव्हीं आकाशवाणी तां ॿुधी रहिया आहियो। वधीक ख़बरुनि जे लाइ तव्हीं असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। ही ख़बरूं तव्हीं असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते बि ॿुधी सघो था। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस अगवान मीनाक्षी नटराजन जी उन दरख़्वास्त खे रद्द कयो आहे जेका हिन मध्य प्रदेश मां राज्यसभा जी उमीदवारी ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दायर कई हुई। अदालत वाज़ह कयो त चूंड अमलदार जी संदसि नामज़िदगी रद्द करण जे फ़ैसिले में सुप्रीम कोर्ट दस्त अंदाज़ी कोन कंदी। ध्यान ॾियो त चूंड अमलदार तेलंगाना में हिकु ॾोहारी मामले बाबति मालूमात लिकाइण जे इल्ज़ाम में मीनाक्षी नटराजन जी नामज़िदगी रद्द कई हुई। राष्ट्रीय इम्तिहान एजेंसी NTA 21 जून खां थियण वारे NEET UG वर इम्तिहाननि जे इम्तिहान जी वक़्त मयाद 15 मिंट वधाए 195 मिंट कई आहे। इहो इम्तिहान दोपहर 2 बजे खां शाम 5:15 बजे ताईं हलंदो। हिकु रिपोर्ट।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों

0: साथ सहयोग करें। अमर यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार रेस्क्यू यानी रिटेल पेट्रोल पंपनता इधाराई औद्योगिक थोड़े तजारती ग्राहकों पारा बारण पदार्थ की खरीद करण से रोक लगाई है। सरकार चयो तो उन्हें पैं जरूरत जो पेट्रोल

0: श्री मित्र आप सुनी रहे छो आकाशवाणीना अमदावाद वडोदरा केन्द्रनो प्रसारण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इस सोशल मीडिया पोस्ट में आगे श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि उन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और

समिति केन्द्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिमेश्वर संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिमेश्वर में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।

0: तो चिन्हित किया जाएगा।
1: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार आपसे कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला बढ़ा साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारियर नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे आज ना मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जणाव्यु विज्ञान शिक्षण अने उद्योग साहसिकता सहित क्षेत्रों में महिलाओं महत्वपूर्ण भूमिका भजवी रही छे। सरकारे संस्थाकीय अने वाणिज्यिक खरीदारों ने रिटेल पंप पर ईंधन खरीदवा पर प्रतिबंध मुक्यो। केन्द्रीय जाहिर परामर्श माटे टेलिकम्युनिकेशन नियमों मुसद्दो बहार पाड्यो। अमदावाद विमान दुर्घटना की आज प्रथम वर्षी निमित्ते मृतकों ने अपाई रही है शोकांजलि। बीजे मेडिकल कॉलेज में श्रद्धांजलि आपवानी साथे वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर नु आयोजन करायु। राज्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सरहदी गामों की मुलाकात अंतर्गत एडीजीपी अजय कुमार चौधरी पूर्व कच्छ वगड़ विस्तार रापर में जाटावाड़ा और शिराणीवाड़ की मुलाकात ली। डीआईजी सुधा पांडे भूज तालुका मोटा दिनारा गाम की मुलाकात ली विस्तार की परिस्थिति की वाकेफ थे। नर्मदा डेममांथी पाणी छोड़वामां आवता आगामी 3-4 दिवसमां कच्छमां आडेसर फतेहगढ़ सरहदे चेनेज 82 सुधी पहोंची जशे। खाली थई गयेली केनालो भराता अने डायवर्जननुं पार करता पाणीने छेवाड़ाना मूळकूबा सुधी पहोंचता अंदाजे 1-2 अठवाडियानो समय लागवानो अंदाज व्यक्त करायो। काजरी द्वारा पद्धर अने लाखोंदमां खेत बचाव अभियान अंतर्गत खेडूत संपर्क अने जागृति कार्यक्रम योजायो। वैज्ञानिकों अने निष्णातोए खेडूतोना खेतरोनी रूबरू मुलाकात लईने तेमनी साथे सीधो संवाद कर्यो। अंजारमां चालू वर्षथी शुरू थशे नवी पॉलिटेक्निक कॉलेज। पर्यटन पर्व निमित्ते मांडवी बीच खाते आगामी 14 सांजे 5 भातीगढ़ लोक डायरो तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम योजाशे। आगामी 7 सुधी दक्षिण गुजरात विविध विस्तारों में वरसादनी आगाही। मुख्य समाचार पूरा थया।

0: सीसीटीवी नेटवर्क में हुआ तबादला पर विशेष प्रावधान। केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार में 12 वर्ष पूर्ण थवाने अवसरे विविध कल्याणकारी योजनाओं लाभार्थी सरकार प्रति आभार मान रहा है। अरवली जिला ना मोड़ा खाते छेल्ला 7 वर्ष थी सोडानी लारी चलाता तुलसीराम गौड़ा जणाव्युं के अगौर वंदन माटे तेमने ऊंचा व्याजे पैसा उधार लेवा पड़ता था, परंतु प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हेठळ तेमने तबक्कावार 10,000, 20,000, 50,000 सुधीनी लोन मिली, जेना कारणे धंधाने मजबूती मिली अने आवकमां वधारो थयो। सुरेन्द्रनगर जिले में वढ़वाण खाते थे वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाड़िया वढ़वाण सिटी बोर्ड एटलास प्रोग्राम का शुभारंभ कर जामनगर बोर्ड एटलास ने जाहरात करी तेज अ चेकलिस्ट ऑफ अ बोर्ड एट वढ़वाण सिटी नाम पुस्तिका विमोचन करायु। आ प्रसंगे श्री मोढवाड़ाए जणाव्युं कि वन्यजीवों माटे बचेला विस्तारों रक्षण करवू आपनी प्राथमिकता होवी जोईए। तेमणे उमेर्युं कि वर्ष 2030 सुधी 500 गीगावोट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न कर वीजळीनी 50% जरूरियात आ ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में पूरी करने लक्ष्य छे। उत्तर गुजरात के केटलाक जिला में आज हलवाथी मध्यम वरसाद की आगाही है। हवामान विभाग ने जणाव्या मुजब आगामी दिवसों में दक्षिण गुजरात में वलसाड, तापी, दमण और दादरा नगर हवेली में वरसाद की शक्यता है। जो कि आगामी 7 दिवस दरमियान राज्य में अनेक विस्तारों में न्यूनतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस की आसपास रहने की शक्यता हो हवामान विभाग के नियामक डॉक्टर ए के दास ने जणाव्यु।
1: 12 दिन से लेकर 18 दिन तक गुजरात रीजन में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों में दक्षिण गुजरात की जिला है उसमें संभावना रहेगा। वलसाड, दमण, दादरा नगर हवेली, कापी, इसके आसपास ये मेले रहेगा। इसके आगे फिर आज जो नॉर्थ गुजरात के दो डिस्ट्रिक्ट में आज हल्का से मध्यम बरसात का संभावना ये है बनसकांठा और साबरकांठा के लिए। उसके आगे 16 दिन से आपका जो सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र है उसमें हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा।
0: सरकार ने जो भी इशू चल रही है राजस्थान में।

हुआ कई जीवन रूप तैयार कर देते हैं। कई जीवन रूप तैयार करते हुए तो खास रूप में ध्यान ये रखना है कि यदि सिद्धि सूर्य प्रकाश में मिले तो वर्षा में के तो पानी मिला ऊपर ना पड़े। वह आप ये कह रहे जीवन रूप में जो सीधे आगे के उपयोग करना समय है तो सीधे जी के कर सकते थे तो जैसे संग्रह करो हुए तो अच्छा सूर्य प्रकाश में तेने सुकली अने सौम्य कोत्व में और ब्रह्मयोग रूप में करे अने जमीन में सीधे संपर्क न रहे एवं रीते संग्रह कर सके। आत्म जीवन

¿Qué es lo que dice?

नर्वा सिंगल्स ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारतीय खिलाड़ी आज एक तरफी क्वार्टर फाइनल मुकाबला में चाइनीज ताइपे ने चेन सू यू ने 21-6, 21-9 थी हरावी सिंधु में आगामी मुकाबलो सेमीफाइनल मुकाबला में जापान की अकाने यामागुची सामे थशे यामागुची आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला में भारत ने तन्वी शर्मा ने 21-14, 21-14 थी हरावी थी ग्राहक बाबतों खाद्य और जाहिर वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी भारत की सौथी मोटी बहुशाखाकीय औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल टेस्टिंग सेंटर एनटीएफ प्रदर्शन की प्रशंसा करी है। श्री जोशी सोशल मीडिया संदेश में कहूं कि ताजेतर वर्षो में एनटीएफ प्रदर्शन प्रशंसनीय रू केन्द्रीय मंत्री एनटीएफ डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव ने मिला था। श्री जोशी परीक्षण संस्था ने देशभर में अत्याधुनिक परीक्षण केन्द्रों स्थापित करने कार्यक्षेत्र विस्तार करने निर्देश आप कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ना डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह साथ की बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की पुनः परीक्षा सुगम पारदर्शक और सुरक्षित संचालन तमाम हिस्सेदारों वच्चे वधु सारा संकलन की जरूरियात पर भार मूक्यो। श्री सोमनाथ ने जणाव्युं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार और जिला वहीवटी तंत्रों पुनः परीक्षा सुगम संचालन ने सुनिश्चित करने साथ मिली काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि छेल्ला 12 वर्षों में सरकार महिलाओं की संपूर्ण क्षमता ने साकार करने अनुकूल वातावरण बनाव्यू। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा श्री अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने सरकार प्रतिबद्ध। भारत एयर मिशन आज वारिया आरंभ कर विदेश मंत्रालय भारत में अमेरिकी दूतावास उप्रमुख जेसन मिक्स ने समन्स पाठा और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर आकाशवाणी पर समाचार पूरा था। हम पशी आप आती का सवाल 7:10 प्रादेशिक समाचार सांभी शकशो।

Thank you.

0: की व्याख्या करो तो यहाँ पर की चोटी देखे लो बच्चे शीशा की तरह रही है।
1: सचमुच क्या प्यारी चोटी है, बिल्कुल ऐसे लग रही है तो जैसे चांदी की बनी हो।
0: चलेगा
1: हाँ

0: सच मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी ऊंची जा सकती हूँ।
1: कामयाबी तो कब से

0: नहीं संतोष जी, आज अपने कमरे में ही चाय पीऊंगा।
1: क्यों?
0: इसलिए कि आज आप चाय पिला दीजिए। डॉक्टर, कल के बाद तो फिर कभी चाय बनाया तो कभी पीना होगा।
1: कल फिर और चाय मिले
0: जाना ही होगा संतोष जी, एक दिन तो लौट नहीं होगा।
1: कुछ दिन और नहीं ठहर सकते?
0: ठहर सकता हूँ तो दो चार दिन ठहरने से क्या होगा।
1: दो चार दिन के लिए खुली रहूंगी कि दुनिया बुरी होती है, लोग खुद बस होती है, कोई किसी के दर्द की दवा नहीं
0: पाता। यह क्या कहेंगे संतोष जी, मुझे मालूम है कि मुझे कभी का हक है कि नहीं, लेकिन फिर भी क्या करूँ। अगर आपने मुझे अपने लिए कुछ करने का कभी भी मौका दिया तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा।
1: और मैं क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि जिसने पहली मरतबा मेरे दिल को ही रखा, मैं उससे लेती ही रहूंगी, तकलीफ ही देती रहूंगी।
0: ये मेरे लिए तकलीफ नहीं होगी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। जिंदगी में

走到水。Thank you.

0: कानून और एंकर एटमी की आवाजें थी फिल्म का नाम था विजय पथ। इस गीत को जमीर आजमी ने लिखा और धुन बनाई अनु मलिक ने।
1: हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी मेरे बारे में।

पता दीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मंच आयोजित कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,650, मुंबई 400091। मंच आयोजित विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई

0: शाहिद चौहान और उपजागे की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म तनु वर्ड मनु का गीत। राजशेखर के बोल और कृष्णा का संगीत था। जिनके बांसुरी के मधुर पान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: बंगाली के गुनगुना के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उड़ घुमा रहे हैं, मगर बांस नहीं है। वो जो घुटन है, उस घुटन को बंगाली के गुनगुना में जब तक नहीं लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत की।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पंडित रोनू मजुमदार, संगीत सरिता मई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सोनू निगम की आवाज़ फिल्म का नाम संघर्ष, गीतकार है समीर और

0: तमाम गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़े कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: Jake Hulsh. वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
1: और अब आज का चुटकुलों कार्यक्रम।

0: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपने साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा खाद्य सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 163 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2000 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दिखता के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री रमित रवान कोलितुवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे लिए बहुत हुआ। हमारा रिलेटिव और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इस

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी के इस विजनरी सजेशन को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यम

0: इन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडिव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरते प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सत्यन अख्तर।
1: यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा

0: QR kodlara kaçan patlı cari kiye can. Vitamina kasat anında kumar atar sonra samatar dili.
1: Şey Amarnath Yatra 3 Julay se 28 Agast tak çalegi. पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उच्च कीमत दे रही है।
0: जमीन हमें

0: सचिव डॉ पी वी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले

0: www.abcrn.gov.in.
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट बाल्टिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनीति को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनीतिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया के लिए यह नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय

0: सोचे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाला पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी है, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफरोजी।
1: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका यह बयान भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चैन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामा को ची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सहन मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, मालय, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया है।

0: सीमावर्ती के क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नागरिकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Shadow Affairs Jason Meeks to launch strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, previous

0: उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Union Minister for Culture and Tourism, Vijayendra Singh Shekhawat, has said that the Modi government is committed to the conservation and restoration of India's cultural heritage. In an exclusive interview with Akashvani News, he said, under the mission to bring back stolen or smuggled antiquities from abroad, 670 sculptures and artifacts have been brought back so far. Mr. Shekhawat expressed confidence that this number will cross 1,000 by the end of this year.
2: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको ज्ञान भारतम मिशन
3: अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन मिशन मोड अंडर द नेम ज्ञान भारतम मिशन वी आर डिजिटाइजिंग आवर मैन्युस्क्रिप्ट्स इन दिस विजन डिजिटाइज

0: listen into what the Home Minister said as to what the country is expected to gain from this historic agreement.
1: पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिनरल के खनन के लिए भी रास्ता आगे खुलता हुआ दिखाई पड़ता है।

0: 1500 बैरल प्रतिदिन की जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे।
1: डॉक्टर शर्मा, इन कम टू यू ओम मिस्टर शाह थिंक द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स अवेलेबल इन नागालैंड वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सोर्सेज इन द सेक्टर। व्हाट इज द पोटेंशियल द होल नॉर्थ ईस्ट

0: दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार है दूसरे जमाने की जानी मानी ऐसी अदाकारा जो है बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।
1: एक बोल

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी।
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहेंगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा,
1: और मुझे वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी।

9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत के कबाले में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी इस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम्हें से कोई लड़की इस फिल्म में काम करेगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

जाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा है और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही है। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थी। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गाना।

0: को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही है श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेलुलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गई और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: ने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बिमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कादार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी।
2: दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आए, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकर्षित किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झंकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गई इस फानी दुनिया से, दे गई फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थी, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

सभी का स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मांगता है तो उसे मिलती है झड़की। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांध कर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। एक ना एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है और होता है कुछ ऐसा हाल।

0: बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती है अपनी कमियां। 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता। पर क्या उन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं बिना? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, ये भी बजाया, ये भी बजाया।

कहीं भागे सभी की बहन, कहीं भगवान की नानी है। बोझा सा ससुर का बहते बापरे, पिताजी तो पिता, हमें एक सुर भी लाना

हालातों को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि भाई सारा कसूर है उस दिल का। ये बदमाश न जाने क्या क्या मन में घोलता रहता है, पर मन इसके इशारे पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती है कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, नहीं दिल बहकाएगा और न ही बोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहाँ कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

वीप आप सुन रहे हैं दिल और दिमाग का सरकार। यू जी लाख समझाने पर मन को तो करनी है अपनी ही, और देखिए ना आप हो चाहे किसी के पीछे पीछे इतनी दूर, और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी तो की जाए, अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने न पड़ जाए। जाने कौन सा सुर साध रहे हैं और कौन सा

जहाँ दिल और दिमाग अपने सुर और ताल मिला ले, वहाँ समझो इंसान का वन पधार है। उस पर जो नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा, तो मानो हम गए काम से। डरते डरते भी आ पहुंचे हैं उनके पीछे, लेकिन वो तो वो है, क्या कहें।

दिमाग की एक टिकड़म कभी कभी काम भी कर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें ना की हूँ, लेकिन खिड़की से वो भी झाँकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहाँ भी हो रही है वही टिकड़म? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है

रंग बिरंगे कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म के इस अखबारे से। मोहम्मद रफी, अशोक भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं।

करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सेवावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी स्वामीनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पूर्व परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पूर्व परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी पूर्व परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी

के सदस्यों ने भाग किया शामिल है। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए अनेक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यता है, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरू

0: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जब भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोध से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसमें संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वास्तविक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का यह वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से इस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद किन संपदाओं पर राष्ट्र अपना प्रोवेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलिवेंट है, भारत ने अपने इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो पैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ है,

0: टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
1: यह हमारी संस्कृति के मानदंडों, हमारी सभ्यता के मानदंडों, हमारी आस्था के केंद्र जिनकी आपने चर्चा की, काशी माला का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के मंदिर बनाने की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिज्ञासा का प्रतीक है उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथ पुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिला ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लैवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो वहाँ लेकर के जाऊंगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके

हवाई कम हो, वे हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको उसको 2047 तक जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है, तो वहां पर पर्यटन के लिए कहीं जाए, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती और खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करते हैं कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है, तो हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे। जी बिल्कुल।

0: सबका क्या रिस्पॉन्स आपको देख रहे हैं?
1: देखिए, हम योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए उस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्ट्रेंथन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं। इसी बहुत सारे ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है और क्योंकि संभावनाओं का दौर बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सबको नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशन नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
0: और इस

मुक्त कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की एक जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। मैंने प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिक्षक संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसमें हम सुरक्षित तो कर पाएंगे, उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलेटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया, 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें एम्बुलेटरी पर रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एम्बुलेटरिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सोल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन मैंने प्रधानमंत्री जी ने 3 घंटे तक बैठ करके सुने, और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैनुस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटाडेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत तो प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो है वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन की आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी, और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा,

से देखा था लगभग 400 वर्ष पूर्व, जब उसने कहा था तब उसको कितने तरह की कठिनाइयां और यात्राओं को झेलना पड़ा था, उसमें पर अटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा 400 साल पहले भारत की मनुस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जेन अल्फा होगी, बीटा होगी, जेन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो एक अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपने लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे,

क्या है, बॉडी का जेस्टर्स क्या होता है, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में। वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी। और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम चंद्र ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत में एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बाहर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द तो मतन जनी हजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोगों ने जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोली में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन्होंने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कार्य श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, तो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया। इस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किया गया और किए जा रहे। देश भर एक साथ में एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करे, इस तरह के

0: कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का जोर हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सके जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा और दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं, दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है, लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रिलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे कौन सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं, 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को

विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, मेरे पत्रकार मित्र जो बातचीत करे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विकसित व्यक्ति के घर गए हैं, ये छोटे से झोपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हो, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हो, मैले कुले चीजें कपड़े पड़े हो, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या राम का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी तो देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को पूर्ण करने की दृष्टि बदली है, तो विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, भाव जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रेरित होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन इसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपरा, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व

0: विकास संस्कृति से जुड़े, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें।
1: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े, उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा कि जब भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थ यात्रा के लिए जाए, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैविध्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत के जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और एक भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
0: कहता नील गगन में सौंध तारा का, पारस में प्रथम फुहारा का और माया में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904004।